आप जी आदि पवित्र हजूरी देव सुंदर दीवान सजाए गए सतगुरु जी सजे हुए दीवाना दे विच अमृत गुरबाणी दा कीर्तन करदिया कथा विचारा करदिया ढाडी वारा राही हार जस सरवण करवाउंदिया सो दर रह रास साहिब जिया दा जाप करदिया समुचिया सेवावां नभाउंदिया होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी खिमा बख्शो जी अगे तो समत बख्शीश करो जी पावन बाणी दा भाव संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सुरत शब्द दे नाल जोड़नी संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल पटावा दर प्रवान करनिया सिखी सिदक भरोसे दी दात बख्शीश करनी खालसा पंथ नूं राज भाग कौमी घर खालसतां दी दात बंदी सिंघां दी तंदरुस्ती रिहाई बख्शीश करो सतगुरु महाराज जीओ। अज मीरी पीरी दिवस धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज

0: है इच्छा है, फिर जेड़ा नाश तो रहत नाम है ना सत नाम, उस नू जपना कर लवो।
1: जानते पाप हो सुख बिसरामो,
0: ते जिस नू जपन दे नाल जीवन अंदर सुख ही सुख वरतेगा। जूना तो निर्लेप हो जावोंगे, जांदी वार अकाल पुरख वाहे गुरु दे चरना।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
0: आगरे दी धरती ते कलना है, हुण तुसी आगरे

0: महाराज बैठी हुई सी संगत संगत जी एदा ही ते सच्चे सतगुरु गुरु रामदास महाराज प्रेम दी निगाह नाल अपने गुरसिखां वल वेखदे ने। गुरसिखां वल वेख के आखण लगे, भाई गुरसिखो तुसी मैनू जानो वध प्यारे हो, बड़े मेरे प्यारे हो।
1: मनुख जन्म दुलभ को तारे,
0: ए जेड़ा मनुखा जीवन है ना, एक गल याद रख लियो, ए बड़ा ही बेशकीमती है। कबीर, मानस जन्म दुलंब है, होए न बार बार, ज्या बान फल पाके भोए ग्रह बहर न लागे डार। जिवें टुटे हुए रुखा नालों फुल मुड़ के वापस नहीं लगदे, एदा ही जेड़ा मनुखा जीवन है जदो लंघ गया सो लंघ गया, मुड़ के औखा ही प्राप्त हुंदा है। धन गुरु रामदास जी आखदे, तुसी मेरे प्यारे गुरसिख हो, मनुखा जीवन प्राप्त होया इस नू सांभ लवो।
1: हर सिमरन बिन ब्रिथा ना खोवहो,
0: भाई गुरसिखो हरी दे सिमरन तो बिना वेख्यो किते बिरथा ना चलिया जावे। तुसी सिमरन ना करो, एदा ना होवे के मनुखा जीवन प्राप्त होया है सिमरन करन वास्ते। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए जेड़ा मनुखा जीवन प्राप्त होया है ना, वेख्यो किते सेवा

0: गुरु सुरजी प्रसाद संगत जी इतनी आगी प्रवान करनी सतगुरु मेरा अंत करन सबदा गाव्या सुनया थाए पौन सब नु दरों प्रभु सिखी सिद्धक भरोसा नाम दी दात बख्शन दासियां दा समा इत्थे समाप्त है। आप संगतां ने इसे तरह सज के पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई हरजोत सिंह जी जख्मी जिन्हां ने आप संगतां नाल गुर शब्द द्वारा सांझ पाउणी है बहुत विद्वान कीर्तनीय हन ते इन्हां दा जिहड़ा अंदाज है प्रातन ख्याल प्रातन शैली है ते प्रातन शैली वास्ते बहुत मेहनत की लोड़ पैंदी है। इन्हां नूं पिता पुरखी ये दात प्राप्त हुई है बड़ी कृपा है सतगुरु जी दी। आओ इन्हां पासों गुरु की बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण करिए दासियां नूं इत्थे बुलाओ फते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: Thank you.

0: KRPI Radio te tusi sun rahe si live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Ek Onkar Satnam Karta Purukh Nirbhau Nirvair Akal Murat Ajuni Saibham Gur Prasad. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਤਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਵਾਸ ਕੱਢ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਪ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੁੰਬ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਭਗਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਈਆਂ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਗਤ ਤੇ ਸੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੰਨਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है उहदे च मां है पिता है? साहब कहन लगे, हाँ जिहड़ा परिवार मेरे नाल जांदा है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं। पुत्तर तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा, वाकई पगलियां वाली गल करदा है, मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हां, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहदियां ने, किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना, ते यही आखना चाहता होवे ते मैं समझदी ना होवां। साहब कहन लगे, हां कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां, अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते। एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते। ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं। मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा, क्या उस परिवार विच मां भी है? हां मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है? तो सतगुर माता दा नाम दसदे ने, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दसदे ने और ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर गौड़ी राग विच दूसरे नंबर ते आया है। सतगुरु कहिंदे ने, माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एहे विशेक। मेरी जो माता है वो शुभ मत है, चंगी मत है, ये कदम कदम ते मेरी रखिया करती है, मेरी हिफाजत करती है। असी उसनू यतीम कहिंदे हां जिसकी मां मर जाए, पर गुरु नानक कहिंदे नहीं, उसनू यतीम ना आखो जिसकी मां मर जाती है, यतीम उसनू आखो जिसकी मत मर जाती है। जिसकी मां मर जाए वह जिंदा रहण दे वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकदा है, पर जिसकी मत मर जाए वह ते कदम कदम ते ठोकरां खांदा है। बुद्धिहीन मनुख कदम कदम ते डोकरां खांदे ने। तो साहिब कहिंदे ने कि चंगी मत, श्रेष्ठ मत, उत्तम विचार, उत्तम फिलसफा, प्रभु चिंतन, ये जिहड़ी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत करती है, मेरी पालना करती है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है, चंगी मत ये मां होई, पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलता है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है, जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि उह ते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वह ऐसे यतीम ने, कई दफा समुची मनुखता नूं यतीम बनाउण दे च भागी बन जांदे ने। तो माता मत पिता संतोख, साहिब कहिंदे ने मेरे पिता दा नां है संतोख, ये हर हालत विच मैनू खुश रखता है। लोभ ते संतोख की व्याख्या दो लफ्जां विच करनी होवे तां इतनी है, जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, ये संतोखी की भाव दशा होंदी है। जो कुछ है जैसा है परवान है कबूल है। लोभी की मानसिक दशा की है, जो कुछ है जैसा है कबूल नहीं, जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे मां बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रलब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जब कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुलां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा, और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहिंदे मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फातेह आजम सिकंदर कहिंदे ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटिया होया सी रेत विच। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखरी टुकड़ी विच सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा है। नेड़े चला गया, रेत विच लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर कित्थे चले हैं, किहड़े पासे गमन कीता। सिकंदर कहण लगा फकीर साई मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला है लंबी चौड़ी सेना लेके। तां उह फकीर कहण लगा ठीक है, ए दस जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। आखण लगा फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा जे तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। कहिंदे ने जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा, समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी। सिकंदर हैरान होया सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा जे कल्पत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा। तां सिकंदर कहण लगा फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हां, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा ठीक है पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा। गुस्से च आके सिकंदर कहण लगा मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहण देंगा जो मेरे कब्जे विच ना होवे, जो मेरी पकड़ विच ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा है हुण सवाल खत्म, पर नहीं फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। इते खाबो ख्याल विच भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने कि इस तों अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा। तो फिर सिकंदर कहण लगा फिर मैं अपने घर जावांगा आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा आराम करांगा। फकीर कहण लगा तू सौ पुआड़े पाके आराम करेंगा, ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत विच लेटे हैं, असी आराम कर दे पए हैं, जे तू आराम करना है ते आ इत्थे लेट जा असी आराम दे चां। तू सौ पुआड़े पा के आराम करेगा ते असी आराम दे चां, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते विच ही दम तोड़ गया, उनू आराम नसीब ना होया। मनुख की कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते आउंदी है, ते आराम उसे दिन नसीब आउंदा है जद चार मनुख चुक के चिता ते रख दें दिन। इस तों पहले आराम कित्थे, भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है आराम नहीं रह जांदा। पर जे मन विच संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच है, ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है, उहदी भज दौड़ विच भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा है, आराम देंदा है, सुकून देंदा है। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एह विसेख। तो तृप्ता जी ने पूछया नानक जी ए ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है ये थोड़ी मां है, जो संतोख है ये थोड़ा पिता है। पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं होंदे, पत्नी भी होंदी है। असी सुलखणी नाल थोड़ा व्याह रचाया सी, थोड़े बच्चे भी हैं। जिहड़ा परिवार थोड़े नाल जांदा है क्या उस देच पत्नी है, क्या उस देच बच्चे हैगे ने? साहिब कहिंदे ने हां। सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान, सरम सुरत दोए ससुर भय, करणी कामण करमन लै, करणी भगती उच्चा इखलाक आचरण। ये भगती मेरी कामण है, मेरे नाल रहिंदी है, अठे पैर मेरे नाल रहिंदी। भगती रूपी कामण दा जन्म कित्थों होया? साहिब किन ने साहा, सरम सुरत दोए ससुर भय। सरम मेहनत, सुरत सियाणप विचार टिकाओ एकाग्रता, मेहनत रूपी सोहरा ते सुरत रूपी सस दे संजोग तो एक लड़की दा जन्म होया जिसका नां है भगती। साहिब कहिंदे ने ए मेरी कामण है, ए मेरी इस्त्री है। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है, निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्ब सुख पाया। भगती नू नार आख्या है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहिंदे ने ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान दा जन्म तर्क तो है, संशया तो है, भगती दा जन्म श्रद्धा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हां कि स्त्री जगत विच श्रद्धा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत विच ज्ञान प्रधान होंदा है। पर श्रद्धा तो हीणा ज्ञान अधूरा है और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत दे ऋषि मुनिया ने ये चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके तो ये अर्ध अंग हैं, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष को श्रद्धा ना मिल जाए पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्मदाते पुरुष ने, और अंधविश्वास से भटकते हुए जिहड़े मनुख ने कहिंदे ने इसना दे तादाद स्त्रियां दी ज्यादा होवे, क्योंकि श्रद्धा है ज्ञान नहीं, पुरुष कोल ज्ञान है श्रद्धा नहीं, दोवें अधूरे रह जांदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे चलण वास्ते पैर ना होवन तां वी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। जद किसी मनुख दे अंदर चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भगती दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वह मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भगती भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्जवल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। सरम सुरत दोए ससुर भय, करणी कामण करमण लै, मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है, भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदियां जीव तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यावदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। जिवें उदम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त विच धन नहीं मिलता, मुफ्त विच धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त विच भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त विच नहीं मिलता, कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असी देखते हां पिता का कमाया हुआ धन पुत्र नूं मिल जाता है, कई दफा दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नूं मिल जाता है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी का कमाया हुआ नहीं मिल सकता। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है, क्योंकि धन ते दूसरे का भी मिल सकता है। प्यो का धन पुत्र नूं मिल गया, दादे का धन पोतरे नूं मिल गया, धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म की लाटरी नहीं निकलती। धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा, आप कमाना पैंदा, मेहनत करके कमाना पैंदा, और ए निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है और दिन ब दिन धर्म घटदा जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकदा। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वह पिता की झोली च पा सकदा है और पिता ने कमाया वह पुत्र के हत्थां च दे सकदा है, पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है। प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकदा। इसका इतिहासक सबूत है। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश से कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, यह भी नाम का रसिया बने, यह भी बाणी पढ़े, यह भी परमात्मा नाल जुड़े, पर नहीं, वह झगड़ता ही रहा, वह नास्तिक ही रहा, वह कलेश पांदा रहा। उहदे संबंध च महाराज के बोल भी ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों जगरत पाप। वह लड़दा ही रहा, झगड़दा रहा, इच्छा ख्वाहिश होण दे बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज दी पृथ्वी चंद भगत ना बन सके, संत ना बन सके, धर्मी ना बन सके। इत्थे पिता पुत्र दी झोली च नहीं पा सके। दूसरे पासे असी देखदे आ प्रहलाद दी बड़ी कोशिश सी कि जिहड़ा राम दा रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वह मेरे बापू कोल भी होवे, वह मेरे पिता कोल भी होवे, पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम दी दौलत प्रहलाद कोल सी, वह हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं इह दौलत दित्ती नहीं जा सकदी, स्वयं कमाणी पैंदी है, आप कमाणी पैंदी है। मनुख उसे दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उसे दिन धनवान बनता है, जिस दिन इसके कुल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहब कहते हैं, मेहनत मुशक्कत ये मेरा सौरा है, सुरत मेरी सस है, इन्हों के संजोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भक्ति। साहब कहते हैं वो मेरी कामण है, करनी कामण है कर मन लै। तृप्ता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल व्याह असी कराया सी, भगती रूपी कामण नाल व्याह किसने कराया और कदों होया। गुरु नानक इस दे संबंध विच भी दसदे ने, साहिब कहिंदे ने साहा संजोग व्याह विंजोग। सतपुरशां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, ये मेरी मंगनी होई सी। सतपुरशां दी सोबत विच मैं बैठा तां भगती नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी होई सी। ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा व्याह हो गया, ये मेरा व्याह हो गया। दुष्कर्म दे खत्म होंदिया, गलत विचारां दे खत्म होंदिया, गलत कर्म दे मिटदिया ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग व्याह विजोग, सतपुरशां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान दे चिक बोल बड़ा कीमती है, ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ए महान रचना है गुलिस्तान। कहिंदे ने ओ एक दिन बैठे सन, हाथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल, कोल बैठे उन्हां दे शागिर्द, ओ पुछदे ने उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसी खुश रहिंदे हो, आनंद विच रहिंदे हो, जबकि अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसी अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती विच रहिंदे हो, आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज है, सानू भी यह राज दसो। तो कहिंदे ने जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लगदे, काफी देर तक सूंघदे रहे। शागिर्द कहिंदे रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहण लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता है, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी, पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों नूं समझाया है ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी ने। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੋ ਮਸਤਮ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਅੰਬੀਰੀ ਗਜ਼ਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਜੋ ਅਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੋ ਮਸਤਮ। ਦਸਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਬਾਓ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਵਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ। ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਐ ਸ਼ੇਖ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਬਾਓ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਗਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਵਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ੇ ਦਰਮਨ ਅਸਰ ਕਰਦ ਵਗਰਨਾ ਮਨ ਹਮਾ ਖਾਕਮ ਤੇ ਹਸਤਮ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਹਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ ਗਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸੱਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਣੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗਾਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰਾਲਵਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ।
0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala, baby. Yeah.
2: Mercy.

500 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखण दी एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक हैं, फिर एक हैं। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है, लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसे भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने जो बयान किया, सत चित आनंद, वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है, तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नु समझ जाए तो तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए तो पवित्र है,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਕਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख, जो विचार नु मत्था टेक दिए, विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दिए। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए, इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम भी बहुत लगाओ, जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुछ उदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं, ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुछ उदे जा है। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है, ये पूरने ने। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नूं अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ये भेंट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करता है, गुरु अपने विचार इस नूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां विच लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां विच काम है, गुरु दे विचारां विच राम है। मनुख दे विचारां विच हंकार है, गुरु दे विचारां विच निरंकार है। मनुख दे विचारां विच क्रोध है, गुरु दे विचारां विच दया है। मनुख दे विचार विच मोह है, गुरु दे विचार विच प्रेम है। क्रोध भेट करे ते दया मिले, ये काम भेट करे ते राम मिले, ये हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नू भेट करना की है, अपने विचारां नू भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चली दी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारों का मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहते हैं, बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस उपरले रखियो गुमान है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमें प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानूं मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नूं गोरा, किसे नूं काला, किसे नूं सांवरा, किसे नूं लाल, किसे नूं जर्दी मायल, किसे नूं गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है,
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े आया मांस, और मांस देते लिपटी हुई मिंज, और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार सोचनी चितवनी ते आहंग, इसनु कहंदे ने मन बुद्ध चित आहंग, मन बुद्ध चित आहंग। इसनु शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहंदे ने, चतुष्टा अंतःकरण। चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नु मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नु तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया, बुद्ध। ते जद मनुख किसे नु याद करदा है या याद विच बैठा है, चिंतन विच बैठा है, ओही मन बन गया चित्त, मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन, मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आंदा है। पहले मनुख तन दा मान करदा है, धन दा मान करदा है, जोबन दा मान करदा है, प्रभुता दा मान करदा है, परिवार ते मान करदा है, जात ते मान करदा है, कुल ते मान करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते मान करदा है, बाकी किसे ते मान नहीं करदा, गुरु ते मान करदा है। तान मान दीबान साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते मान। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है, ये ते महिला है, हंकारी है, यही लोगों कोल है। कोई जोबन का माण करता है, कोई प्रभता का माण करता है, कोई धन का माण करता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरता है। धन का माण, जोबन का माण, प्रभता का माण। भगत भी मैरस करा निमाणे नहीं आते, माण तो रहत नहीं आते और निमाणे नहीं आते। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस ते? उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहंदे ने, माण मांगो तान मांगो धन लखमी सुत दे, हे प्रभु निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल तान नहीं, उहदे कोल माण कहदा, और जो निताणा है निमाणा है, वह तो मरण तो पहले मर गया, तो कबर से चला गया, तो चलती फिर लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे ने उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसी तरह की भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किसका? जोर हुण प्रभु दा। तान मान दीबान साचा नानक की प्रभटे, हे प्रभु हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही मान है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचने विच की है? अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचने दे बदलदिआं ही जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं, यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है, मनुख दे विचारां विच की है, सोचने विच की है, यादां विच की है? धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहते हैं कि मनुख दे विचारां विच, मनुख दी सोचने विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है, और की है? कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं, अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं, सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां विच की है? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाणा, सिर के लेख ना पढ़े इयाणा। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है? पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए, साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे, शुद्ध कर लेवे, साधु, जो साधना दे लीन है, मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े सियाने सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइयां नु समझ ना सके, ते मन दे हथों ठगा गए, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची का रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाए दा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, उही भुल विष्णु करदा है, उही भुल शंकर करदा है, उही भुल इंद्र करदा है, उही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और ओह कह रहे जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा, उही कह रहे जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो,
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करता है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रख देने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिहड़ा अहंकार नू पट्ठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते अहंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ने ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जाण, असी ना ही तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इते केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा अहंकार, फिजूल अहंकार, फोका अहंकार। तो जिहड़ा अहंकार नू पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है, और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नू समझना है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, यह भी मैं अर्ज कर दें। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है, तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल एको ही है, ठिकाणा एको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों में दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है, दर्शन करने ने वेखना है। अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ी है। अज एक मंदिर दी कोठड़ी विच भगवान नू वेखीए, फिर बाहर वे

0: ये सुन के ही अंदर प्रवेश कर देने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है ते अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने। और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फूल जैसा दूसरा फूल नहीं है। एक दरख्त नू जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नू लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दिच आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दिच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा दे च रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा और दूसरा बनाण लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे, सड़ी समझ दे आ गए ने। इतने इस तो अगा भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजा की भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन के दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है ते मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं ते अपनी जवानी हंडा चुके, बुढ़ा हो गए। 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं महापरले कहंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावें अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਜੈਸੀ ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਅਨੇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ, ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਗਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਦੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਪਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਖੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ। ਖੇਲ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ, ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ। ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨਫਾ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ, ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਹੈਯਲ ਲੇਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਵੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਖੇਲ तमाशा बनाण लगे हाँ प्रसन्नता है परमात्मा नो बिटाण लगे हाँ भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नु संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगदा है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता विच जिहड़ा एक नु वेख लवे, एक नु समझ लवे, ओ पवित्र है। उसनू किसे नाल घिरना नहीं होवेगी, किसे मुल्क नाल, किसे जात नाल, किसे व्यक्ति नाल, किसे कौम नाल, किसे धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वज जाएगी, मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलों लंघे आई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए, उहनू दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है। अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वह एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरा अनेक है। जिसनु लहरा नाल नफरत है उन्हों सागर नाल भी नफरत है, जिन्हों किरणा नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है, जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नाल भी घिरना है। उन्हों एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नु समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं, मन विच वसाया एक नो। तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैन बैन मोह एक, एक दोए ठाए न जाने। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां दे च भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे, उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह हो सकता है। गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास फड़ी रसना ते इक, फड़े नेत्रा दे चिक, नैन बैन मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसे एक तो बिना दूजे नू नहीं जान दे, थानू एक ही एक दिखाई देंदा। सारियां किरणा दे इको ही सूरज दिखाई देंदा है, थानू सारी लहरां दे इको ही सागर दिखाई देंदा है, थानू सारी अनेकता दे एक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहंदे ने, सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो, एक दे च लीन रहिंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानू सुपने भी एक दे ही आउंदे ने, तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहिंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे ये सारे हिंसे जमा करने पैणगे जोड़ करना पेगा तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे तीस एक इकती पंच छत्ती पैंती इकहत्तर हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र बनी इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आप नसीब होया तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वरने गुरु अमरदास कव भल भण तू एक लोड़े एक मने कवि भल भट कहिंदे ने हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा तुहानू एक दी लोड़ है तुसी एक नू मनदे हो एक नू वेखदे हो एक नू बोलदे हो एक नू पढ़दे हो और एक नू मन दे च वसाया थोड़ी जागृत अवस्था दे च एक थोड़ी स्वपन अवस्था दे च वी तुसी इस गल नू समझ लिया कि एक वस्त बूझे तो होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना एक नू कोई समझ जाए एक नाल कोई जुड़ जाए ओही पवित्र है बाकी कोई पवित्र नहीं क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा उन्हों सारिया किरणा दे सूरज दिखाई देगा उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा उन्हों सारे पशु पक्षियों दे ईश्वर दिखाई देगा जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप ए विसंसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया ए अवस्था जिस दी बन जाए ओही पावन है ओही पवित्र है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने तू एक होंदा होया अनेक है और अनेक होंदा होया एक है अनेकता तेरा खेल है अनेकता तेरा तमाशा है ते बस मैं यही तमाशा देखन लिए आया मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा अजीब है तेरा तमाशा देख रहे हैं। एक सूफी का कहना है जो हंस रहा है सो हंस रहेगा जो रो रहा है सो रो रहेगा सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा उसका तमाशा है इतने होवेगा तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है इसी अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे एक दिसे एक रसना ते आ जाए एक हिरदे च वस जाए वो ते पावन है वो ते पवित्र है बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्त बूझे होवे पाक बिन बूझे तू सदा ना पाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक एक तो गुरबाणी आरंभ होती है सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी ओही भगत ओही संत ओही फकीर ओही वली अल्लाह ओही अवतार ओही महापुरुष और ओही पावन ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इस खंड की विचार सरवण करदे आ आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए साहिब रहमत करन सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारे दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल अपने गुरबाणी विचार नू जहे सरवण कीता कल फिर इसे समय दास आप जी दे चरण परसेगा पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण करांगे उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा साहिब रहमत करन इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन भुल चुक दी क्षमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.

मैं कल अर्ज कीती सी, काल इतना प्रबल है कि तन चाहे गुरु पीर पैगंबर अवतार दा है, समा मिटा देंदा है। काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शोजो अवतरा, काल पाए करवेसन प्रगासा, सकल काल का कियो तमास। सारा संसार काल दा तमाशा है, समय दा तमाशा है। इस तमाशा की हो रहा है, बनना हो रहा है, मिटना हो रहा है, मिलना बिछड़ना हो रहा है, बनना मिटना हो रहा है, एक तमाशा हो रहा है। जो बन रहे है वो ही मिट रहे है, जो मिल रहे है वो ही नाश हो जाता है। इस समय च हो रहा है। एक बच्चा ते बचपन दे च उलझिया रहिंदा है, कौन काल नूं वेखे। पर जरा होर अगे वेखे, काल तो भी अगे, तो फिर वो अकाल है। जिदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी दृष्टि, अपनी समझ, अपनी सुरत अकाल तक पहुंचानी है। जिदी दृष्टि अकाल तक पहुंच गई, उन्हों काल नहीं रोकेगा, उसके अंदर काल का भय भी नहीं रहेगा। जैसे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलिया नो मौत का डर दे के भयभीत नहीं किया जा सके। तरह तरह के भय दे साधन हरनाकश ने मुहैया किए प्रहलाद वास्ते, वो नहीं डरिया क्योंकि दृष्टि अकाल ते। काल की डराएगा, दृष्टि ते अगे लंघ गई। हुण मैं थोड़ा दोहरावा, बच्चा अपने बचपन दे ही उलझा रहिंदा है, खिडौणियां दी खेड अपने हाण विच। जवान भी अपनी जवानी च ही उलझा रहिंदा है, अगे नहीं देखदा अपना हाण और अपनी वासना, अपनियां कामनावां। एक जवान जवानी तो अगे नहीं देखदा, जबकि उसके जीवन विच कुछ अगे भी है, प्रगट होवेगा, सामने दिखाई देवेगा, पर इतनी लंबी निगाह होवे। होर भी अर्ज कर दें, बुढ़ा इसे बुढ़ेपे नु ही नहीं देखता। एक जवान अपनी जवानी दे उलझिया रहिंदा देखता है, एक बच्चा अपने बचपन दे उलझिया रहिंदा बचपन नु देखता है, बुढ़ा बुढ़ेपे च नहीं उलझिया रहिंदा, बुढ़ा ते पिछे वेखण लग पैंदा, जवानी याद करन लग पैंदा, बचपन दियां गल्लां याद करन लग पैंदा, उदी दृष्टि पिछे कर लैंदा है। महाराज कहिंदे पिछा फेर ना मौलड़ा, ना वेख पिछे, वेख ही ना। अज तू पिछे वेख रहे है, हो सकदा है तेरा ध्यान तेरी सुरत बिल्कुल पिछे मुड़ जाए और मनुखा जन्म अजाई गवा दे। बाबा फरीद कहंदे देख फरीदा जे थिया दाड़ी होई पोर, अग्गा नेड़ा आया पिछा रेया दोर। पर पिछा वेखदा पिया, पिछोकड़ वेखदा पिया। जद बुढ़ा भी अगे नहीं वेखदा, जवान किथे वेखे, बच्चा किथे वेखे। बच्चा बचपन दे उलझिया होया है, जवान जवानी दे उलझिया होया है, बुढ़ा उते पिछे वेखण लग पैंदा। अगां को तरां धर्म दे मार्ग ते सुरत उदों चलदी है जद बचपन जवानी बुढ़ेपे तो कोई अगे वेखदा है, इस तो अगे वेखदा है, निगाह नूं लंबा करदा है। अकाल दे दर्शन तो पहले जिन्हों काल दे दर्शन हो जान, समझ लो अद्धी वाट तय हो गई है। अपने विच काल दे दर्शन होन, फिर अपने विच ही अकाल दे दर्शन होणगे। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। दरअसल को काल नु ही नहीं वेखना चाहता तो अकाल नु किस तरह वेखेगा।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन तर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: संत कमाप्त होत उदहार
1: आप त्रैलोक कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजे
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवहि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करहु संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रकट सब लोए
0: सब दे ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ते फल तिस जन के मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत के मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाई प्रीत
1: जिस जन आवे हा प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार है
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार है
0: निर्मल शोभा अमृत तांती बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊज तांती शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

0: बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। मैं कर सारे मनुखा का एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होने दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नु दिते हुए ने। सीमित ने ये असीम हो सकते ने, उनु याद कर करके किवें उसनु याद करिए। पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा और मुखी सजना दा। बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott.

वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू।

तत् स्यों तत् मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास

0: वेदन पर ब्रह्म परमेश्वर आराधना के हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने फिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर जौनी पावे। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक्त चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक वक जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंगे, जोवन जवानी स्वपन दे आधार पे खड़ा होंगे, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होंगे। जोवन धन प्रभ ताके मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बंदी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच, धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बंदी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता हो, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विची अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस भी महफिल देख खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहो कुनीन हम पंडिते, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी

0: कह रविदास सब है नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। क्योंकि सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन हम बड़ कव मैं बहुत वड्डा कवि मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ते बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंगे और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंगे क्योंकि अवगुणा के आसरे से अहंकार को अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता से खड़ा है अवगुणा से खड़ा है नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करम इक ना नाद ना बेद इकद नो न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान गे रस रस कस ना जानन इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर अखर का भयो न लहन अक्षर का कोई बोध नहीं अकल दे तल ते जी नहीं रहा संगीत का कोई बोध नहीं किसे धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते हैं चलत कत टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाह मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा अहंकारी चाहता है सारिया दिन निगाह मेरे ते आन सब मैनू ही देखन चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेड़े तू है जी हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां का मान जोबन जवानी का मान हड्डियां का मान मांस का मान मिंज का मान और खलड़ी का मान इस तो अलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने
1: कर्पूर बहुत सुगंधा, पर्श मानक देहं मलिनं, मजारु दर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं, मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां, मैलियां हो जांदियां ने, मजारु दर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध, खून, मिंड, मांस, कलड़ी। अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है, फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किश तिसका दिया दरबे, पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगह चलिए ता अहंकार नु बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई ला है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इसके अहंकार नु होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखन नु मिलता है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है, उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हर नाग कुछ ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने, मैं आ खुदा, कौन आंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है और हर एक का माण मैं हो जावा, मेरे से माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देती है। बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, इसने भगवान का रूप बना लेता। मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ते तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे च वी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च वी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा विच भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

रात से जूं कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होए, कुछ बिगड़ना भी ना होए, ताँगी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतनी जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया है, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी वधदे। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार अरारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नूं। जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धन दसती है एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जब उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन कीना पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहण लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है। असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहण लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपदे दर्शन करा ते नजराना है ते भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन दा दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी
कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करने बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्यां बैठे हां तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे दे चले हां तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने। खैर जिस घर विच जाना सी गए, आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनों वेख रहे ने। सोना चोला पहने हुआ है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस विस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार

निकल गए। किसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले की निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने। तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे ची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनु इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने। तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गए इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करने। ना गल करके भी कर गया, जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र ने छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पीछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नूं भी नहीं मन सकता। अहंकार जींदा है मैं आश्रित तू तो बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे के बोल नूं अगे करके, ते बकरे दा

के गर्दन पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वज दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकते मैं मनाने के लिए, ले गया नदाफ उसे धुन की बनाने के लिए। आंद्रा रह गईया सुट दतिया गईया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया कम विच वर्तिया, केवल आंद्रा बच गईया। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरे ही रह गई सुन।

लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रुई पिंजी जांदी है। जरब

0: कोई बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे बूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे है। वेद है हकीम कौन परमात्मा, तेरी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस ना है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू इतनी औषधि होगी। मैं इतने रोग हो गया, ये रोग ते औषधि दोनों मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर, कह सब कुछ तू ही है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पर मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पर प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुरु कृपा जय नरको कीने ते ए जुगत पछाणी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अरे नाम सूरज दे, और सूरज दे नाम करके झगड़ा नहीं है, पर जेड़ा महा सूरज परमात्मा है, परमात्मा दे अखरी अर्थ ने महा चानन, जो हजारा सूरजा नु जन्म देन वाला है, कई कोट ससियर सूर निकत्र करोड़ा सूरजा नु जन्म देन वाला है, वो महा सूरज उदे अगर बहुत सारे नाम आवन ते झगड़ा, अल्लाह ते राम दा झगड़ा। गुरु नानक कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, ए प्रभु मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने कुर्बान जाना। इस तरह का घर एको ही मिलेगा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम है कुर्बान जाने। खाना एक नहीं तो कोई गल नहीं, इससे की झगड़ा करना। पहनना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, पीना एक नहीं है तो कोई गल नहीं, इच्छा एक नहीं है तो कोई गल नहीं। प्यो पुत्र की इच्छा भी अलग अलग होंगी है, दो बिरावान दी भी इच्छावां मुख्तलिफ हो जाएं, सारे संसार की इच्छा एक किवें करांगे। उपासना का ढंग एक नहीं है कोई गल नहीं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्राणायाम की साधना कर रहा है, कोई नेती धोती कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गल नहीं। अगर उपासना का ढंग एक नहीं है तो भी चलेगा। महाराज कहने एक गल नहीं चलेगी, इष्ट एक होना चाहिए, वही एक परमात्मा, भावे उसनों खुदा आख लो, भावे उसनों राम आख लो, भावे उसनों वाहिगुरु आख लो, करतार आख लो, इष्ट एक चाहिए, फिर सारे ब्रह्मण दे एकता हो सकती है। और सारे उसे तो आए ने, उसे एक तो ही सारी अनेकता ने जन्म लिया। अनेकता इंज है जिमें सागर एक है ते लहरां अनेक ने, सूरज एक है किरणा अनेक ने, परमात्मा एक है संसार ते अनेक ने, जीव जंतु ते अनेक ने। इस सारी अनेकता दा उस एक नाल संबंध जुड़े होया है, इस वास्ते सारिया ही लहरां भरा भरा ने, भैन भरा ने, सारे एक सागर दे च ने। रब नाल जुड़िया होया मनुख सारे संसार दे नाल भाईचारा बनांदा। मैं फिर लफ्ज़ दोहरावां, जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल दूर करदे ने, ओह विचार मनुख नूं परमात्मा तों भी दूर करनगे। जेड़े विचार बंदे नूं बंदे दे नेड़े नहीं आण देंदे, ए विचार बंदे नूं रब दे नेड़े भी नहीं जाण देणगे, दूर रहेगा। हकीकत है, सच्चाई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल ए, सबको उम्मीद हम आपने कीना, हम सब ना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा तो मेल कियो मेरे राजन। कर्म उन्हां दा ए, हरि मंदिर साहब दी रचना सरोवर दिच कीती, सरोवर गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर वसाण दी ते सरोवर नूं बनाण दी कल्पना गुरु अमरदास जी दी, कार्य आरंभ किया गुरु रामदास जी ने। सरोवर दे हरिमंदर बनाया गुरु अर्जन देव जी ने, हिफाजत का सारा इंतजाम किया गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, अकाल तख्त बना के। एक शहर गुरु नानक दे इतने स्वरूपां की महिमा है, मेहनत है, ता ही उसनों सिखी का केंद्र गिणते हैं। लेकिन गजब की गल, ऐसे हरिमंदर की नहीं गुरु अर्जन देव जी मियां मीर तो रखवाते हैं, और मियां मीर अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमों पर रखता है। बस थोड़ा जिहा विखाद इतों ही शुरू हो गया, इतों ही शुरू हो गया। सता सत नाल टकरा गई, दो ताकत आउंदियां ने, एक बाहर दी एक अंदर दी। बाहर दी ताकत नूं कहिंदे ने सता, अंदर दी शक्ति नूं कहिंदे ने सत। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी दी कोशिश सी कि सता सतवादी दे हाथ च होवे, होई है पर बहुत थोड़े, कदी कदाई राजा जनक। वो सतवादी भी सी, सताधारी भी सी, वो संत भी सी ते राजा भी सी। राम नूं लै लईए, वकत दे अवतारी पुरुष ने, हिरदा संत वर्गा है पर राजे ने, हकूमत है। कृष्ण अवतार है, संत है, पर राजा है द्वारका दा। गुजरात दे छोटा जिहा इलाका द्वारका,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीत

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: 1746 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1846 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1946 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नूं जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती कोई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहिब ने कहा नानक नाम निरंजन जानियो धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया किन्नी भगत प्रेम लिबलाई उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहिब जी ने एक मन खो के लिब ला के
अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उसकी प्रेमा भगती लई सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने यह बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मूह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां जे मूह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली बाहर दी भटकना तो बचा सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना। तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया। तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहिगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ये भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंदा हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा है ओ आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी
ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ

0: अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musia, baby. Yeah.
2: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का